0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: अच्छा लगे या बुरा लगे, so mandate को तो मानना पड़ेगा।
2: आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गलती की वजह से सांसद नाराज है या अभिषेक बनर्जी की गलती की वजह से?
1: सी देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूं, ठीक है? आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूं, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव।
2: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
1: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको ये जरूर कह रही हूं कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूं कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है।
2: क्या टीएमसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे?
1: देखिए, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी है असम में, और मैंने बीजेपी की सरकार देखी है। अब टीएमसी की सरकार कभी असम में होगी कि नहीं मैं कह नहीं सकती, बट आई हैव सीन द कंपैरिजन। तुलना करने की तो मैं लायक हूं, इतनी तो मुझे दिख रहा है कि काम में क्या अंतर है और जमीन आसमान का अंतर है, यही सच्चाई है।
2: मैं खत्म करता हूँ इंटरव्यू। आपको लगता है पिछले 15 साल में करप्शन, गुंडागर्दी, लूटमार, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती थी, वो हुआ बंगाल के अंदर? तो आपने भी कई टीएमसी नेताओं के साथ काम किया, आपने ममता बनर्जी के साथ में काम किया, आपको लगता है ऐसा
1: गुंडागर्दी हुआ कि नहीं, चोरी हुई कि नहीं, डकैती हुई कि नहीं, ये मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? तो मैं कैसे टीवी पे बोल दूं कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने चोरी की, मैं क्यों बोलूं?
2: मेरा तो क्या नाराजगी आपकी?
1: देखिए, कुछ भी कारण हो, कुछ तो कारण होगा, जो भी कारण है वो कारण मैं हेमंत दा को बोल चुकी हूँ।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: When the Ujjwala scheme was launched in 2016, beneficiaries were entitled to 12 LPG cylinders a year. Since then, the number of cylinders came down to 9. And on Tuesday, the government cut it to just 4 as the country grapples with an energy crisis triggered by the West Asia war. The impact is visible in the villages near Lucknow. Rural households are switching to traditional stoves. Firewood is back in demand.
1: सिलेंडर खत्म हो जाता है जब नहीं मिलता है कतनी देर दौरा का महीनन दौरा का सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो अब खाना तो बनावे करे परिवार हमारा का भूखन मारा करे
0: निर्मला इज कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा शी हैज अ सब्सिडाइज्ड सिलेंडर बट इट नीड्स रिफिल
2: योजना जब शुरू हुई थी तब तो 12 ही मिल रहा था तब चल रहा था काम
3: तब तो काम चल रहा था
2: बहुत अच्छा था तब सब कुछ
3: जी
2: अभी तो 9 के बाद अब 4 करने जा रहे हैं सालाना
3: तो सर 4 सिलेंडर करने जा रहे हैं तो 4 ही महीना तो चलेगा
2: और बाकी बचे 8 महीने चूल्हे पर
3: मैंने सर चूल्हे पे बनाऊंगी
0: Some families claim that while they got free cylinders they are struggling to get subsidized
4: उज्ज्वला का तो एक भी नहीं मिलता हमको
5: नहीं
4: पहले से ही नहीं मिलता वो सब्सिडी का जो पहले खाते में पैसे जाते थे
5: हाँ।
4: क्या 200 रुपए 150 रुपए अभी वो भी 2-4 साल हो गए बंद हो गए
5: सब्सिडी नहीं मिल
4: सब्सिडी भी नहीं मिल रही
6: अभी 4 सिलेंडर मिलेंगे हम लोग कैसे खाएंगे पका के क्या खाएंगे
0: The LPG prices were hiked by 29 rupees last week. While one domestic LPG refill now costs 942 rupees, the subsidized refill

0: When the Ujjwala scheme was launched in 2016, beneficiaries were entitled to 12 LPG cylinders a year. Since then, the number of cylinders came down to 9. And on Tuesday, the government cut it to just 4 as the country grapples with an energy crisis triggered by the West Asia war. The impact is visible in the villages near Lucknow. Rural households are switching to traditional stoves. Firewood is back in demand.
1: सिलेंडर खत्म हो जाता है जब नहीं मिलता है कतनी देर दौरा का महीनन दौरा का सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो अब खाना तो बनावे करे परिवार हमारा का भूखन मारा करे
0: Nirmala is cooking food on a chula. She has a subsidized cylinder but it needs refill.
2: योजना जब शुरू हुई थी तब तो 12 ही मिल रहा था तब चल रहा था काम
1: तब तो काम चल रहा था
2: बहुत अच्छा था तब सब कुछ
1: जी
2: अभी तो 9 के बाद अब 4 करने जा रहे हैं सालाना
1: तो सर 4 सिलेंडर करने जा रहे हैं तो 4 ही महीना तो चलेगा
2: और बाकी बचे 8 महीने चूल्हे पर
1: मैंने सर चूल्हे पे बनाऊंगी
0: Some families claim that while they got free cylinders they're struggling to get subsidized
3: उज्ज्वला का तो एक भी नहीं मिलता हमको पहले से ही नहीं मिलता वो सब्सिडी का जो पहले खाते में पैसे जाते थे क्या 200 रुपए 150 रुपए अभी वो भी 2-4 साल हो गए बंद हो गए
2: सब्सिडी नहीं मिल
3: सब्सिडी भी नहीं मिल रही
4: अभी 4 सिलेंडर मिलेंगे हम लोग कैसे खाएंगे पका के क्या खाएंगे
0: The LPG prices were hiked by 29 rupees last week. While one domestic LPG refill now costs 942 rupees, the subsidized refills are available at roughly 640 rupees. But with the cut in the number of refills under Ujjwala scheme, large sections of society will now be hit. With Samarth Srivastav and Omkar Wable, Bureau Report, India Today.

0: Sabha leader. Prasoon Banerjee was seen meeting with Sukhendu Sekhar Roy on Monday. Remember, Sukhendu Sekhar Roy in his interview to India Today had said that several others will follow suit when it comes to leaving the Mamata fold. 20 Lok Sabha MPs who've already dumped Mamata Banerjee, as they claim that they are set to become the real TMC. They not only have the numbers by their side, but they are also now proving why Mamata Banerjee is not their leader anymore, because they've now presented a letter to the Lok Sabha Speaker saying that there were constitutional violations under Mamata's leadership. Mamata Banerjee, who could well lose the party symbol to the rebel camp, is now her biggest fear and how she will battle this, because Prasoon Banerjee, Lok Sabha MP, who's joined the Kakoli group and he's also signed on that letter seeking a separate block. Let me take this to Himanshu joining us on the broadcast. Himanshu, aur jankari chahenge aapse us chitthi ke bare mein jo rebel group ne Lok Sabha speaker ko bheja hai aur kis tarah se Prasoon Banerjee ne bhi ab TMC ko chhod diya hai. या फिर कहें ममता बनर्जी के ग्रुप को छोड़ दिया
1: है। सांसद हैं जो देखिए प्रसून बनर्जी वो सांसद हैं जिन्होंने भूपेंद्र यादव से जब बागी सांसदों ने मुलाकात की थी वो थे, उन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं उस लेटर पर जो बागी सांसदों ने स्पीकर को देना है, जिसमें ये है कि उनको एक अलग गुट की मान्यता दी जाए, उनको अलग सीट एलोकेट की जाए वहाँ जहाँ एनडीए की बेंचेस हैं और वो एनडीए के साथ रहेंगे. तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के लिए ये एक लड़ाई जो है वो देखा जाए तो बहुत मुश्किल होती जा रही है और वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, क्योंकि काकोली घोष दफ्तवार ने उस पत्र में इस चीज़ का जिक्र किया है कि पार्टी जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही थी. पार्टी जो है वो संविधान के अगेंस्ट जाकर कई ऐसे फैसले लिए हैं जो पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं है. तो इन सब तथ्यों को जो है स्पीकर को काकोली घोष दफ्तवार ने जो है वो पत्र में लिखा है और अब देखना यह है स्पीकर इस पर क्या फैसला लेंगे. लेकिन कानूनी जानकारी लेने के बाद, कानूनी सलाह लेने के बाद जो है स्पीकर इस पर फैसला लेंगे. लेकिन एक बार जरूर स्पीकर से ये बागी सांसद जो है वो मुलाकात कर अपनी जो मांग है उसको रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत से सांसदों के सिग्नेचर हो जाते हैं और ये फिर कहा जाता है ये सिग्नेचर हमारे नहीं है, फॉर्ज है. इसमें एक केस राघव चड्ढा के ऊपर भी आया था जब सिलेक्ट कमेटी बनाने की बात आई थी तब भी. तो इस तरीके की चीज़ों को पहले ही जांच परखने के बाद जो है स्पीकर फैसला लेंगे. लेकिन इतना जरूर है बागी सांसदों का जो गुट है वो लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत है और उन्होंने सारे लीगल एस्पेक्ट्स जो है उस पत्र के अंदर जो है उस लेटर में उसका जिक्र किया है कि उनको बागी गुट के रूप में मान्यता क्यों दी जाए.
0: तो इस मीटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, कब ये रिबेल फैक्शन लोकसभा स्पीकर से खुद मिलेंगे इन पर्सन टू से कि ये जो सभी सिग्नेचर्स हैं ये लेजिट हैं, वो मीटिंग कब हो सकती है?
1: देखिए वो क्योंकि बागी सांसदों को बुलाया का जो पत्र है उस पे लीगली जो सजेशंस हैं जो उसके बाद जो है स्पीकर ऑफिस से उनको कॉल जाएगा या वो लोग स्पीकर से दरख्वास्त करेंगे कि उन्होंने जो पत्र दिया है उसके उस पर उनको जो है अपॉइंटमेंट दी जाए स्पीकर के द्वारा. वो एक कह सकते हैं आज या कल के अंदर जो है ये हो सकता है कि बागी सांसदों की मुलाकात जो है वो लोकसभा स्पीकर से हो और फिर वो अपनी मांग को पुख्ता तरीके से रखें और बताएं उनकी मांग क्यों जो है अलग गुट की है और उसके क्या कारण है कि पार्टी जो है वो संविधान के अनुरूप यानी संविधान के अनुसार जो है वो काम नहीं कर रही है.
0: हिमांशु, ममता कैंप से आपको और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से वो लीगल रूट का सहारा लेकर इस चिट्ठी को काउंटर कर सकते हैं, वो अपने एंड पर क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि शायद किसी लेवल पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये मूव लिया जाएगा.
1: देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती समझती हैं, बड़ी नेता हैं और एक लंबा अनुभव है उनके पास. पूर्व में आप देखें तो LJP में जब टूट हुई थी तो चिराग पासवान कोर्ट गए थे, जब शिवसेना में टूट हुई थी तो उद्धव ठाकरे कोर्ट गए थे, एनसीपी में जब टूट हुई थी तो मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास गया था। तो ऐसे में लीगल जो एक्सपेक्ट्स हैं, अगर पार्टी पे क्लेम करने की बात हो, सिंबल पे क्लेम करा जाए इस गुट के द्वारा, तो मामला पहले चुनाव आयोग जाएगा। चुनाव आयोग में अगर फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा, उसके जिसके खिलाफ आएगा, जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा वो कोर्ट जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर पार्टी के सिंबल और पार्टी पे क्लेम का बात हो कि वो ओरिजिनल टीएमसी हैं और ममता बनर्जी जो हैं वो टीएमसी नहीं है, टीएमसी पार्टी में उनका अधिकार अब नहीं है, क्योंकि लीगली तरीके से एक नया इलेक्ट्रॉल जो पार्टी के अंदर संविधान है उसके अनुरूप जो है वो काम किया जा रहा है।
0: जिस तरह से ये रेजिग्नेशन आ रहे हैं, प्रसून बैनर्जी मिले भी थे सुखेंदु शेखर रॉय से और उन्होंने जब इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत ऐसे नाम आने वाले दिनों में आएंगे जो कि ममता फैक्शन को क्विट कर देंगे। और क्या नाम एक्सपेक्टेड है और किस तरह से इनकी ये मीटिंग गई?
1: देखिए, अब क्योंकि 20 सांसद के करीब जो हैं उनके सिग्नेचर हो चुके हैं बागी सांसदों के, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राज्यसभा के अंदर जो है वो लगातार एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं टीएमसी के सांसदों के। 3 टीएमसी के सांसदों ने पिछले 5 दिनों के अंदर जो है वो इस्तीफा दिया। सबसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया, फिर सुष्मिता देव ने दिया, आज जो है प्रकाश सिंह बैराइक ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। हमारे को जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, अभी 2 से 3 इस्तीफे जो हैं वो जल्द ही हो सकते हैं, जिसमें कोयल मलिक का नाम भी शामिल है कि वो जल्द ही जो है राज्यसभा की संसद सदस्यता से जो है वो इस्तीफा दे सकती है।
0: तो अब अगर नंबर्स की बात करें हिमांशु, की ममता कैंप की साइड पर क्या नंबर्स हैं और रिबेल फैक्शन की साइड पर क्या नंबर्स हैं, किस तरह से स्थिति है?
1: देखा जाए तो ममता बनर्जी के जो रेबल हैं, जो बागी गुट है, उनके पास अभी 20 सांसदों की जो है वो संख्या है 28 में से, क्योंकि टीएमसी के जो टोटल सांसदों की संख्या थी वो 29 है, लेकिन बशीरहाट से जो सांसद थे उनका निधन हो गया है और निधन के बाद जो है टीएमसी में सांसदों की संख्या जो है लोकसभा में वो 28 है। 28 में से 20 सांसद जो हैं वो बागी गुट में है, 8 सांसद जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं अभी तक। और ये कोशिश जरूर होगी बागी सांसदों की कि टीएमसी के जो बाकी 8 सांसद हैं उनमें भी जो है सेंध लगाई जा सके, क्योंकि टीएमसी में अगर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण सांसद थे जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे, जिनमें काकोली घोष दफ्तवार हैं। सबसे पहले उन्होंने झंडा बुलंद किया पार्टी के अंदर अलग गुट की लोकसभा में। उसके बाद अगर आप देखें तो शियोनी घोष जो हैं वो बहुत करीबी मानी जाती थी, पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है ममता बनर्जी के साथ स्टार कैंपेनर के तौर पर जिनको बड़ी पहचान मिली वो शियोनी घोष हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें माला रॉय हैं जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी में थी, उन्होंने भी जो है बागी गुट के साथ जाकर जो है अलग गुट की मांग के लिए जो है पत्र पे साइन किया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ममता बनर्जी के जो करीबी हैं वो भी उनका साथ छोड़कर जो है जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संख्या 20 से भी बढ़ सकती है।
0: हिमांशु, रिक्वेस्ट करूंगी बने रहिए हमारे साथ। इन द मीनवाइल वी आल्सो टेल आवर व्यूअर्स व्हाट द नंबर्स गेम इज लुकिंग लाइक एंड वेयर आर द हेवीवेट नेम्स नाउ मूविंग। This is the fight against the loyalty and those who are close aides of Mamta versus the intrigue rebel camp, where 20 MPs have now moved away from the Mamta fold. These TMC MPs include Kakoli Ghosh, Dasidar, Shatabdi Roy, Jagdish Chandra, Barma Basunia, Partha Bhaumik, Pratima Mondal, बापी हलदार, माला रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, प्रसून बैनर्जी, जून मालिया, शर्मिला सरकार, असित कुमार माल, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, देव कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, यूसुफ पठान, रचना बैनर्जी, अबू ताहिर खान, सौगतो रॉय। सो ऑल ऑफ दीज MPs हुव नाउ शिफ्टेड टू द रिबेल कैंप, दिस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बट हु ऑल रिमेन इन ममता'स फोल्ड येट, who continue to prove their loyalty towards Mamata Banerjee, who say, and in fact also send out a message to the rebel camp, that Mamata Banerjee is their leader, Mamata Banerjee is the real TMC. Mahua Moitra, who's still standing in support of Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, of course, her nephew, Shayani Ghosh, Kalyan Banerjee, Kirti Azad, Hazi Islam, Sajda Ahmed, Shatrughan Sinha, who are still standing by Mamata Banerjee. But the situation that is getting very, very interesting now with the step that has been taken by the rebel faction, as they've now moved a letter to the Lok Sabha Speaker to claim that they are the real TMC, of course, basis the numbers, but also to say that there was constitutional violation within the party several times by Mamata Banerjee, who took decisions that were illegal. On those very grounds, they say that they are the real TMC, they must get the party symbol. And like Himanshu was telling us, that a very likely chance that the rebel faction will also appear in person in front of the Lok Sabha Speaker to say that all the signatures on that letter are legit, and on those very grounds, they're claiming the party symbol. More breaking news just coming in. Three missing Indian seafarers have been confirmed dead. This in Mount Setbelo tragedy, where Union Minister Sarbananda Sonowal has expressed grief over the incident involving the Palau-flagged vessel. Sonowal has said that the three Indian seafarers who were initially reported missing have now been confirmed dead. The confirmation that it came after two bodies were recovered following the incident and the search operation was underway. He's called this a profound loss to India's maritime community. Minister confirming that those three seafarers are dead as he conveyed condolences to the families of the deceased. He said that the government of India stands firmly with the bereaved families and is committed to providing all necessary support. Sarbananda Sonowal has directed officials to ensure the immediate repatriation of the rescued crew members. He also instructed authorities to facilitate the swift return of the mortal remains of the deceased to India for their last rites. Let me take this to my colleague Shivani Sharma. To the confirmation coming in from the minister, and extremely unfortunate that those three Indian sailors are no more.
2: Suresha, minutes back, Minister for Ports and Shipping, Sarbananda Sonowal, he's put out a post on X where he has confirmed the death of these three seafarers who were missing after yesterday's incident where the vessel, the Palau-flagged vessel was attacked. The rescue had already taken place for 21 of the Indian seafarers who are now safe, but the three who were missing and two bodies have been recovered. And this is the confirmation that we are receiving from the minister himself. He also has sent out condolences to the family on and assured that the last rites will be done respectfully with the family that is being helped and supported in this hour of grief. So certainly the situation is getting quite worrisome, because this is not the only vessel that has been attacked. Earlier also we saw that Palau flagged vessel was attacked, and yesterday there was strong condemnation of this attack by the Ministry of External Affairs. They also had called the diplomat from United States regarding this particular attack that happened on this Palau flagged vessel with Indian seafarers on board. So certainly this is a very unfortunate news that has broken, that three Indian seafarers who were missing are now confirmed dead by the minister himself.
0: Extremely unfortunate, Shivani, and the situation remains fragile given how there has been escalation. Especially most at risk are seafarers, who are our priority when it comes to their safety. With regards to any response coming in from the Trump administration on this?
2: See, Trump administration has been claiming that they control the Strait of Hormuz, but what's happening in the Gulf of Oman is extremely worrisome, Suresha, because, you know, this is happening in Oman, in the Gulf of Oman region, where these merchant vessels have been operating, and there also these attacks are happening. So certainly this is a very unfortunate incident where the Trump administration has been saying that they control the Hormuz, but they have not yet reacted to this particular incident. And the U.S. diplomat who had been called by Indian Ministry of External Affairs, and the condemnation also had come yesterday evening. So certainly a very strong reaction and a message has been conveyed to United States. But this whole region still remains quite vulnerable, because there are so many merchant vessels. They are not Indian flagged, but Indian people have been working on them. There are seafarers who are from Indian origin who've been working on these merchant vessels, and they are being targeted in these attacks by the United States, and Iranians are also claiming that they are controlling the Strait of Hormuz. So the movement, the free passage to which India had been appealing, is still not going on, and there are fresh attacks that are happening on these vessels which are having Indians on them. So certainly a very difficult time for the families who lost their dear ones in this attack, and many more vessels are still stuck in this region, Suresha.
0: But can the Trump administration really wash off their hands of what has happened? Because fact still remains, Shivani, that the reason that the coast of Oman remains fragile is because Iran is targeting that particular region in order to settle terms against the U.S. And in a bid to take revenge from them is where the collateral damage unfortunately happening on our side too. And it is the U.S. that is responsible, India having lodged a strong protest with the U.S. diplomat.
2: Suresha, see, it's been more than 100 days since the conflict broke out, and it's not a conflict only between Iran, Israel and United States. There are multiple nations that are getting impacted, including India, not only in terms of losing the energy securities, the challenging economies, but now the seafarers being attacked. So certainly there are so many unanswered questions that need to be answered by America and Iran too. They have been strong allies and partners to India too. And these kind of attacks that are now targeting Indian seafarers on board these merchant vessels is certainly unacceptable. That's what the protest has also been conveyed to the United States by India. So certainly the Indian authorities are communicating to United States as well as to Iran regarding these seafarers, and so that the safety and security can be ensured. But certainly these kind of incidents are worrisome. They are breaking the rule of law that we must have in that region, because the Strait of Hormuz, the Gulf of Oman, all these regions are getting targeted, and the seafarers on board these vessels are also not feeling safe. There are more than 13 vessels that are stuck west of Strait of Hormuz, the Indian flagged vessels. They also need security assurances from the authorities now, Suresha. And in Gulf of Oman, because these are the incidents that are coming from the Gulf of Oman. So this is these are the fresh incidents that are bringing more challenges in terms of security of these seafarers who remain stuck in that whole region. And the fresh missile attacks are happening here.
0: All right, Shivani, I want to thank you for getting us the latest. Of course, we keep a close eye on all the developments.

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: कर गए, ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं, हमारे सिंबल पे लड़े, तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना? क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती ही पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में सुवेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है। उधार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे। सीबीआई लगा दी, सीबीआई लगते ही फट दिनी कूद गए। तो ऐसे कूदने वाले बहुत है ना, तो इसमें कौन से रिबेल हो गए? ये किस खिलाफ रिबेल किया है इन्होंने? इन्हें तो अपने, इन्होंने तो अपनी सुविधा देखी है, तो उसके मुताबिक बताओ। आप पूछो प्रश्न क्या है
5: सर। लेकिन उस लिस्ट पे जो लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, उसमें दो ऐसे नाम हैं जिन्हें ममता बनर्जी के बहुत करीबी रूप में देखा जाता था, शत्रुघ्न सिन्हा और सायोनी घोष। इन नामों को लेके आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन था?
4: ये कौन सा लिस्ट है? ये साइंड लिस्ट है? ये लिस्ट ऑथेंटिकेट लिस्ट है? कौन सी लिस्ट है? आपने जो लिस्ट लगाई है, क्या लगाई है वो? आप मुझे ऑथेंटिकेशन दिखाओ। बीजेपी का नैरेटिव फेक और फैब्रिकेटेड नैरेटिव हो सकता है, ये कर लें, कर भी लें, कोई बड़ी बात नहीं।

0: has ended in tragedy. Union Minister Sarbanand Sonowal confirmed the deaths, calling the incident a profound loss for India's maritime community. He assured full support to the bereaved families and said efforts are underway to bring the rescue crew members back home. The government is also coordinating the swift repatriation of the mortal remains. The deaths are likely to intensify questions over the growing risks facing commercial shipping in the region as conflict spreads across West Asia. India-linked vessels are increasingly finding themselves caught in the crossfire of a widening maritime security crisis. The maritime security situation continues to worsen with MT Jalveer that was attacked. Earlier, MT Marivex was attacked on the 8th of June. Though all 24 Indian sailors who were on board were rescued safely, another Palau flag tanker, MT Setabello, that was struck, leaving three Indian seafarers dead.
1: Okay. Sinha's port control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room.
0: And that is where the anger is mounting because three vessels have been struck in 3 days. Most importantly, what happened in MT Citabello, where three seafarers have unfortunately lost their lives, but no one who takes responsibility for it, as India has lodged a strong protest with US diplomat. This even as Iran continues to claim that it is not a fight against anybody else, but if US does not respect the ceasefire agreement, then they will fire. Remember, this has happened off the coast of Oman, where MT Jalveer was attacked, and exactly what happened with MT Citabello. Now, with regards to the situation on MT Jalveer, it is yet not clear to whether anyone on board was attacked as part of what happened, whether all of them have managed to survive or whether there is any loss of life is something that is still unclear at this point. However, we got you those pictures of MT Jalveer that had the front part of the vessel that had taken a hit. My colleague Shivani Sharma, who spoke to slain sailor Aditya Sharma's father, listen in to what he said.
2: हमें जानकारी मिली है कुछ देर पहले कि जो थ्री मिसिंग सी फेयरर्स थे उनमें से एक आपके परिवार के भी थे. आपको ये खबर कैसे प्राप्त हुई और अभी क्या सिचुएशन है इस वक्त?
3: कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे से शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो तीन क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है. उसके बाद हमें कोई भी कॉल नहीं आता, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि लोकल अथॉरिटीज से या एडमिनिस्ट्रेशन से या अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी हैं या चीफ मिनिस्टर सुखू जी और हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी कि हमारे मेरे बेटे की जो बॉडी है उसको हमारे तक पहुँचाया जाए.
2: राजेश जी, अब से थोड़ी देर पहले जो शिपिंग मिनिस्ट्री जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक मैसेज किया है, अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और उन्होंने ये कहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पार्थिव शरीर है उनको भारत लाया जाए, परिवार को सौंपा जाए. क्या आपसे कोई बातचीत हो रही है इस वक्त?
3: नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की है जो एसडीएम होते हैं लोकल यहाँ पे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट आगे फॉरेन मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को की है फॉरवर्ड, तो अब उसका क्या रिजल्ट आता है.
2: आपके बेटे जी, आपके बेटे की उम्र क्या थी, कितने दिनों से वो वहां पर थे, कौन सी मर्चेंट वेसल थी जिस पर वो थे?
3: मैं मेरे बेटे की एज 23 थी, तो इट वाज हिज फर्स्ट जॉइनिंग. उसने 27 नवंबर को दुबई से शिप पर ज्वाइन किया था जो कि सिंगापुर और चाइना के रूट पे था और 5 महीने वहीं पे चलता रहा. अब लास्ट मंथ ही वो मई के एंड में ही वो इधर चाइना के ओमान की तरफ आए.
2: जी
3: जी,
2: आप लोगों से लगातार बात

0: आज आपके जीवन में बहुत बड़ा दिन है, आपने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया, काफी लंबे समय से आप टीएमसी के साथ थे, क्या कारण रहा, क्या मन में क्या बात आई कि आपने इस्तीफा दिया?
1: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्र जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
0: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
1: अच्छा कर रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, अच्छा काम कर रहा
0: है। आपको लग रहा है कि अब तक केंद्र की तरफ से वो समर्थन जो जरूरत थी वो नहीं हो पाया?
1: असुविधा तो था अभी, लेकिन असुविधा नहीं है। अभी कोलैबोरेशन हम लोग को स्टेट एवं केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है। देखिए, मैं जो इलाका से बिलोंग करता हूँ, एकदम बॉर्डर इलाका है, साम लगवा इलाका है, नियरेस्ट भूटान इलाका है, वहां पे जिस तरह का काम शुरू हुआ, अगर वहां एम्स हो, वहां मेडिकल कॉलेज हो जो प्रस्ताव आ रहा है, हसीमारा में एयरपोर्ट हो जो प्रस्ताव आ रहा है, रोड से लेके जो 100 दिन का काम, पीएचसी का काम, ये सब ऑलरेडी ग्राम पंचायत इलाका से काम शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली जो साधारण जो जनता है, गरीब आदमी जो है, उनके नाम पे अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो, उनके अकाउंट पे जो पैसा जाए, तो ऑब्वियसली सबका भलाई होगा। तो रूट लेवल में थोड़ा सा हम लोगों का गैप, सेंट्रल लेवल स्टेट।
0: ममता जी को क्या कहेंगे? ममता जी को क्या कहेंगे?
2: दीदी को कुछ कहेंगे?
3: I have been buying more AI and SpaceX, of course, everybody is onto the bandwagon, hoping that they'll get off on time. So I sold off and I'm waiting that the post listing, there will be a lot of retail frenzy. They have to park another 80 billion odd over the next few days. So I'm waiting for a lower price to come in on some of these AI plays. I think that will create a lot of frenzy, and then there will be pickings at lower price.

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: There are many theories, but mandate is a mandate. अच्छा लगे या बुरा लगे, so mandate को तो मानना पड़ेगा.
3: आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गलती की वजह से सांसद नाराज हैं, अभिषेक बनर्जी की गलती की वजह से?
2: सी देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूँ. ठीक है, आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूँ, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको अनुभव.
3: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
2: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूँ कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है.
3: क्या टीएमसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे?
2: देखिए, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी है असम में, और मैंने बीजेपी की सरकार देखी है. अब टीएमसी की सरकार कभी असम में होगी कि नहीं मैं कह नहीं सकती, बट आई हैव सीन द कंपैरिजन. तुलना करने की तो मैं लायक हूँ, इतनी तो मुझे दिख रहा है कि काम में क्या अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर है, यही सच्चाई है.
3: मैं खत्म करता हूँ इंटरव्यू. आपको लगता है पिछले 15 साल में करप्शन, गुंडागर्दी, लूट मार, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती थी, वो हुआ बंगाल के अंदर? तो आपने भी कई टीएमसी नेताओं के साथ काम किया, आपने ममता बनर्जी के साथ में काम किया, आपको लगता है ऐसा
2: गुंडागर्दी हुआ कि नहीं, चोरी हुई कि नहीं, डकैती हुई कि नहीं, ये मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे. मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? तो मैं कैसे टीवी पे बोल दूं कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने चोरी की? मैं क्यों बोलूं?
3: मेरा क्या नाराजगी आपकी?
2: देखिए, कुछ भी कारण हो, कुछ तो कारण होगा, जो भी कारण है वो कारण मैं हेमंत दा को बोल चुकी हूँ.

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: एक खबर आई कि कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में, जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
2: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है, आप वहीं पे बैठे हैं और मैं आपके मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ, 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ, मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ। और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गई भी नहीं।
1: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
2: हाँ, फोन तो आया था मेरे कोलिग से नहीं, दूसरे साइड से आया था,
1: बीजेपी।
2: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है, तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
1: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
2: देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीती हूँ, जनता ने मुझे आशीष दिया है। इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ, तो घासेर उपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही हूँ।

0: buzz. Did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
1: Where did you see all this?
0: Online at APGE.com.
1: Watson, you're always so plugged in.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also, we registered a strong protest with them. These attacks came from the U.S. Navy that is stationed there. The three ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So, two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So, that is, they are not Indian owned ships; they are all foreign flagged ships.
4: जी, सच्चाई तो ये है, मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत के आएगी. ये मेरा असेसमेंट था, गलत हो सकता है. पर जब रिजल्ट निकला, जब देखा क्या रिजल्ट है, उसमें कई सारे बातें थी, SIR, ये वो, मेनी थ्योरीज, बट मैंडेट इज अ मैंडेट. अच्छा लगे या बुरा लगे, सो मैंडेट को तो मानना पड़ेगा.
5: आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गलती की वजह से सांसद नाराज है, अभिषेक बनर्जी की गलती की वजह से?
4: सी, देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ. मैं इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ कि मैं ममता दीदी पे कमेंट करूँ. ठीक है, आज मैंने उनको छोड़ा है, कल मैं किसी और पार्टी में जा भी सकती हूँ, पर मेरे से तो बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको, अनुभव.
5: और अभिषेक बनर्जी का कैसा लीडरशिप आपको लगता है?
4: कि अभिषेक बनर्जी पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ कि ये मेरा राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं मानती हूँ कि अगर डेवलपमेंट की राजनीति मुझे आसाम में करनी है तो रास्ता यही है.
5: तो क्या टीएमसी के साथ रहकर नहीं कर सकते थे?
4: देखिए, मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखी है असम में, और मैंने बीजेपी की सरकार देखी है. अब टीएमसी की सरकार कभी असम में होगी कि नहीं, मैं कह नहीं सकती, बट आई हैव सीन द कंपैरिजन. तुलना करने की तो मैं लायक हूं, इतनी तो मुझे दिख रहा है कि काम में क्या अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर है, यही सच्चाई है.
5: मैं खत्म करता हूं इंटरव्यू. आपको लगता है पिछले 15 साल में करप्शन, गुंडागर्दी, लूटमार, जिस तरह की बातें बीजेपी कहती थी, वो हुआ बंगाल के अंदर? आपने भी कई टीएमसी नेताओं के साथ काम किया, आपने ममता बनर्जी के साथ में काम किया, आपको लगता है ऐसा
4: गुंडागर्दी हुआ कि नहीं, चोरी हुई कि नहीं, डकैती हुई कि नहीं, ये मैं तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे. मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? तो मैं कैसे टीवी पे बोल दूं कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने चोरी की? मैं क्यों बोलूं?
5: मेरा क्या नाराजगी आपकी?
4: देखिए, कुछ भी कारण हो, कुछ तो कारण होगा, जो भी कारण है वो कारण मैं हेमंत दा को बोल चुकी हूँ.

0: देखिए, हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आता। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता। अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए, और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता है। समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता।
1: अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अवसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने के चलते हर जगह जान पहचान तो थी, और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते।
2: समटाइम्स वन हैज टू बियर सो मेनी ह्यूमिलेशन। आई हैव लिसन, इन ए पार्टी, इन ए पॉलिटिक्स नो पार्टी कैन रिमेन इन परमानेंट पावर, एंड आई एम ए वेरी ट्रूथफुल फॉलोअर ऑफ ममता बनर्जी, एंड व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव That all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days, I am with Mamata Banerjee. Still I am. But point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains, who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay.
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: चुनाव जीत कर आए, आपका स्वागत होगा, वी ऑल विल वेलकम यू, बट दिस इज नो वे। कल तक आप सब दीदी दीदी दीदी कर रहे थे, दीदी की हाव, दीदी का हाव भाव चाल ढाल कॉपी कर रहे थे, कल तक आप दीदी के कॉपी कैट थे, और आज अचानक इस घड़ी में या किसी डर की वजह से या मजबूरी की वजह से या लालच की वजह से या भय की वजह से आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से हूं जो मानते हैं और कहते हैं वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, वंस अ लॉयलिस्ट ऑलवेज अ लॉयलिस्ट।
1: इन फैक्ट वी आर शोइंग नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू एंड ममता बनर्जी टुगेदर एंड आई विल आस्क द प्रोड्यूसर्स टू पुट दोज पिक्चर्स ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। हियर इट इज, शत्रुघ्न सिन्हा एंड ममता बनर्जी, अनदर वन, व्हाइल इट वाज इन द मिडल ऑफ अ कैंपेन। सो सर्टनली यू से दैट वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, शी स्टूड विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, यू आर स्टैंडिंग विथ हर इन हर डिफिकल्ट टाइम्स। पर शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू नो यू आर अ वेटरन पॉलिटिशियन योर सेल्फ, डिड यू रियली एंटिसिपेट that a party like the Trinamool Congress will unravel itself so quickly? It's been just over a month since the results, and here is a record number of people, MPs and MLAs, who are all set to desert Mamata Banerjee. Did you see this coming?
0: Nahin, Maria, nahin. In fact, I'm with you on this. We are on the same page. Never ever expected it would happen, and that too so soon. अभी इस तरह से उन्होंने किया है कि एकदम जैसा लगता है कि अभी तो जिस तरह से SIR का ड्रामा हुआ, जिस तरह से डिस्क्रिपेंसीज का ड्रामा हुआ, यानी सारे ड्रामे के बावजूद जिस तरह किया गया इलेक्शन में, she still got more than 41% votes. इतना ज्यादा वोट लाने के बावजूद इतना जल्दी थोड़े से लालच में या भय में या ईडी सीबीआई पता नहीं, मुझे नहीं कहना, और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, पर जिस भी रीजन से हो ये लोग छोड़ के जाएंगे, इस तरह जाने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ जाने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन। अभी तक स्पीकर साहब ने, चेयरमैन साहब ने अभी तक बताया नहीं कि उनको चिट्ठी क्या मिली है, इन्होंने नहीं बताया चिट्ठी में कितने नाम है, किसके किसके नाम है, ये सब नहीं बताया गया। अब ये चल रहा है, अफवाह चल रही है, चर्चा चल रही है, और इस तरह से मेरा नाम भी डाल दिया लोगों ने, इसलिए आज मुझे आना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई मैं उनमें से नहीं हूं, मैं सुख दुख में साथ देता हूं, सुख दुख में साथ निभाता हूं। मैं अपने नेताओं का, मेरी सिर्फ एक ही नेता है, एक, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही और किसी को मानता हूं।
1: शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू नो ओवर द लास्ट फ्यू डेज अ नंबर ऑफ लीडर्स हु हैव क्विट टीएमसी और हैव फॉर्मड अ सेपरेट ब्लॉक एज इट हैज हैपेंड इन वेस्ट बंगाल इन द स्टेट असेंबली, दे हैव गिवन वन रीजन दैट दे वर अपसेट एंड दे कंटिन्यू टू बी अपसेट विद अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी इज नेफ्यू। How do you look at his working style? Do you also have some concerns about the manner in which he worked? You know, surprisingly, even today, Kalyan Banerjee said that Mamata Banerjee has to choose between Abhishek Banerjee or them. So it is almost like blood versus the party.
0: देखो, पहली बात तो ये कि देव किम ने reason, हम सब ने logic दिया है, reason दिया है कि साहब इतना गड़बड़ था, या ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, या पहले ऐसा होता था। सवाल ये उठता है कि अगर पहले ऐसा होता था तो पहले क्यों नहीं कहा था, आज का ही दिन चुना, क्या मुहूर्त निकाला था आज के दिन, कि आज जैसे जैसे जिस चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को ढाला गया है, जिस चक्रव्यूह में फिर से वो संघर्ष कर रही है, और संघर्ष के साथ शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, वो एकदम बॉर्न लीडर नहीं है बल्कि स्ट्रीट फाइटर है, सक्सेस स्ट्रगल से सक्सेस अचीव किया है उन्होंने, आज उनको इतना परेशान किया जा रहा है या दिख रहा है कितने परेशान हो रही हैं, उस समय आप कंप्लेन बुक लेके आ रहे हैं। अरे ये सब बातें तो पार्टी के अंदर कभी भी हो जाती। और जहां तक आपने कहा कल्याण बनर्जी की, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल वी हैव, एंड नॉट ओनली बेस्ट पीपल, आई वुड कॉल हिम कल्याण बनर्जी एन इंटेलेक्चुअल पार एक्सलेंस, one of the best leaders in the country, such a learned man. आज उन्होंने कहा है वो पर्सनल हो सकता है, अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है या कुछ गुस्सा हो सकता है।

0: है, हो सकता है प्रोफेशनल रीजन हो, वो लॉयर की तरह जाते हैं वहां पे उनको मान सम्मान नहीं मिलता है या वो डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल नहीं मिलता है उनको, हो सकता है इससे भी उनकी नाराजगी हुई हो। बट लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट आर कल्याण बैनर्जी हैज सेड, एंड ही हैज सेड दैट ही इज विद ममता बैनर्जी एंड ही शैल ऑलवेज रिमेन विद ममता बैनर्जी। वो उनके विजडम के साथ है ममता बैनर्जी के। तो हम सबका ही फर्ज बनता है कि हम इस वक्त अपना साथ दें ममता जी को, और उसके बाद भी छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग शायद रिटायर होने वाले हैं इसलिए 4 महीने पहले छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों के और कारण है, कहीं से ऑफर आया है, ये ऑफर देख लिए, पहले भी बहुत जगह से बहुत लोगों को आया था, आज वो लोग कहाँ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फ्राइडे नाइट स्टार बन के मंडे ट्यूजडे को सब सीन से गायब होना शुरू हो जाए। इन बातों को देखना चाहिए, समझना चाहिए।
1: स्पोकन लाइक अ स्टार देयर, फ्राइडे नाइट स्टार, मंडे ट्यूजडे गायब हो सकते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू नो आई स्पोक टू काकोली घोष दास्तीदार, बिफोर दैट आई हैड आल्सो स्पोकन टू संदीपन हु इज एन एमएलए हु हैज यू नो नाउ बीन पार्ट ऑफ अनदर ब्लॉक व्हिच हैज बीन रिकग्नाइज्ड इन द असेंबली, काकोली घोष दास्तीदार हु हैज रिजाइन। दे हैड रिजर्वेशंस एंड दे ऑल्सो सेड दैट दे कम्युनिकेटेड देयर कंसर्न्स इन द पार्टी फोरम। उनके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने छोड़ा, जबकि उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं किए गए।
0: ऑप्शन नहीं था इसलिए छोड़ा, तो फिर जब अच्छा वक्त होता तब क्यों नहीं छोड़ा था? आपने यही यही वक्त चुना है, यानी ये घड़ी जो है मारिया, मैं कह रहा हूं ये शिकायत करने की घड़ी नहीं है, ये घड़ी लड़ने की नहीं है, ये घड़ी जुड़ने की है, ये घड़ी घड़ी कुरेदने की नहीं है, ये घड़ी जख्मों पे मरहम लगाने की घड़ी है, जख्मों को और कुरेदने की घड़ी घड़ी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि आप, पहली बात तो ये कह दूं, मैं काकोली की इज्जत करता हूँ, प्रोफेशनली डॉक्टर रही हैं और अच्छी लेडी होंगी, लेकिन मैं उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ उनको। मैं ना अभिषेक बैनर्जी को अच्छे से जानता हूँ, ना काकोली को जानता हूँ, मेरा सिर्फ 2 ही टर्म है, इन लोगों में से कोई मेरा लीडर ना है ना शायद होगा। मेरी लीडर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ममता बैनर्जी हैं। अगर उनसे कोई शिकायत है तो हम लोग मिलजुल के एक जगह बैठ के बात कर सकते थे। आज ही आपने वक्त चुना है, एक डिच करने पर जब आ गए, आपने फैसला कर लिया है, आप तलाश कर रहे हैं कैसे 19-20 सांसद मिल जाएं और 19-20 सांसद मिलके हम सेपरेट ग्रुप बनाएं। आप कहते हैं सेपरेट ग्रुप बनाएं, कानून कुछ और कहता है, संविधान कहता है कि सेपरेट ग्रुप बनाएंगे या फिर आप मर्ज करेंगे, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने बंगाल की बात की तो बंगाल के स्पीकर ने अभी तक तो कुछ नहीं बताया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, किस बेसिस पे किया है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अभी बहुत सारे पेंच लगे हुए हैं, बाकी हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, वो
1: जी
0: पिक्चर अभी बाकी है, तो
1: जी
0: पिक्चर अभी बाकी है, अभी यहाँ भी देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। मैं नहीं समझता हूँ ये जो कह रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं, नंबर में तो मेरा भी नाम शामिल किया था कि मैं भी हूं उसमें से, मैं तो आपके सामने खुल के कह रहा हूँ, मरिया के सामने जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना मुझसे कोई बात हुई है, ना मेरा सिग्नेचर लिया गया है, ना मुझसे किसी ने कंसल्ट किया है, और ना किसी ने जुर्रत की है कहने की कि पार्टी छोड़ दो, ममता जी को छोड़ दो। हाँ, जिन लोगों ने इन्वाइट किया है मुझे, हमारे बीजेपी के भी फ्रेंड्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं, चूंकि मैं बीजेपी से आया हूँ, करीब 30 ईयर्स आई हैव बीन इन बीजेपी, सम ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स आर स्टिल देयर, उन्होंने मेरा भला सोच के ही मुझे इनवाइट किया होगा। मैं ऐसे भी सर्वदल प्रिय हूँ, सारे तरफ चारों तरफ मेरे दोस्त हैं, दे इनवाइटेड मी, आई एम ग्रेटफुल टू देम, बट मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, सुख दुख की घड़ी में, मैं ममता जी का साथ निभाऊं, और इसीलिए आई इशूड ए 3-line whip ऑन माई बिहाफ एंड आई हैव
1: राइट
0: कन्वेड इट टू ममता जी ऑल्सो। और मेरा 3-line whip ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल किसी और पार्टी में जाने का या किसी और दिशा को देखने का।
1: बिफोर यू इशूड दैट 3-line whip, शत्रुघ्न सिन्हा जी, यू
0: थैंक यू।
1: ऑल्सो पुट आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट इन विच यू कॉन्ग्रेचुलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैनी सॉ दैट एज अ मिक्स्ड सिग्नल, हाउ शुड दैट ट्वीट बी रेड?
0: नहीं, वो तो बिल्कुल, अगर आपने ट्वीट को पढ़ा होगा तो
1: जी
0: इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई विश मैं अपने गॉड ब्लेस किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, हु नॉट ओनली आवर फ्रेंड माय फ्रेंड बट आल्सो ही इज अ फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, फ्रेंड ऑफ द नेशन। और 12 साल उनके पूरे हुए हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ आपके या बाकी लोगों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो मेरे भी हैं। कुछ वैचारिक मतभेद कई बार हो जाते हैं दोस्ती यारी में भी, ऐसे भी पॉलिटिक्स में, बट ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं कदर करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ उनके लंबी आयु की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके ऊर्जावान रहने की मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इसीलिए आज मैंने उनको विश किया है 12 साल पूरा होने पे, और इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए।
1: शत्रुघ्न सिन्हा जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बिफोर आई लेट यू
0: सेम
1: गो,
0: हियर मारे।
1: जस्ट वन क्वेश्चन, हु इज दिस बीजेपी लीडर एंड योर फ्रेंड्स एंड व्हाई डिड दे अप्रोच यू राइट नाउ?
0: नहीं, आई गॉट मेनी फ्रेंड, दे आर वंडरफुल पीपल, उन्होंने हमें बुलाया है, वाई शुड आई नेम देम बाबा, आई शुड नेम देम, दे आर आवर फ्रेंड्स। उन्होंने अच्छा मेरा अच्छा सोच के ही कहा, उनके नजर से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दे मस्ट हैव थॉट कि इनका, शत्रुघ्न जी का कुछ और भला होना चाहिए, ही डिजर्व सिर्फ 30 साल बीजेपी में रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, 30 ईयर्स आई बीन इन बीजेपी, वन ऑफ ए मेंबर, जो पार्टी जब दो सीटों की थी, ऑपोजिशन में थी, तब से मैं आया था। बाद में हो सकता हमें कुछ महसूस किया और कुछ लोगों की वजह से कि perhaps some of them are no more any, अभी है भी नहीं दुनिया में,
1: जी
0: कुछ लोगों की वजह से या कुछ और फील हुआ हो कि लोकशाही नहीं चल रही है वहां, तानाशाही चल रही है, ऐसी फीलिंग हुई हो मुझको, और उसके बाद हम वहां से आए। पर मेरे दिल में उनके लिए कोई कटुता नहीं है, मेरा ऐसा ही मानना है हमेशा कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, हैं तो इसी सोसाइटी से, हैं तो हमारी फ्रेंड्स, हमारी रिश्तेदार। और हम लोग में ये जरूर कहते हैं कि मतभेद हो कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। आई हैव
1: जी
0: गॉट ग्रेट लव एंड रिगार्ड फॉर सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन भारतीय जनता पार्टी, इंक्लूडिंग द फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और माई फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु एंड अल्टीमेट लीडर श्री लाल कृष्ण अडवाणी। मुझे भारतीय भारत रत्न डॉक्टर नाना साहब, नाना जी देशमुख लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरा पर्सनल लव, पर्सनल रिगार्ड्स तो बहुत सारे लीडर्स के लिए हैं, पर आज के दिन में पॉलिटिकली स्पीकिंग मेरी लीडर एक हैं, और वो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी।
1: In no uncertain terms, that is Shatrughan Sinha saying Mamata Banerjee is his leader. Thank you so much, sir, for speaking to India today. And let me get you the latest. And this is with regards to Abhishek Banerjee's interrogation by the CID, which is happening in Kolkata. The CID interrogation regarding the signature forgery incident at the Legislative Assembly has now continued for over 4 hours. Trinamool Congress General Secretary and Member of Parliament Abhishek Banerjee has not yet left the CID headquarters at Bhavani Bhavan. Why is the CID questioning him for over 4 hours? This has been going on for way too long now, Anirban. What are you picking up?
2: Exactly, so 4 hours exceeded, and right now Abhishek Banerjee is still inside the Bhavani Bhavan, the CID department. And right now the questioning is going on. As far as the sources is concerned, that he is being asked the same question several times regarding the signature forgery. And as we all know, that around 3 of the MLAs has already been complained about it, and also the 13 MLAs were considered to be in this signature forgery that being made by the Trinamool Congress Party as being alleged. And right now, what we can learn is just behind me is the Bhavani Bhavan, which is the headquarters of CID, and Abhishek Banerjee is still there, and questioning is being there. And also what we have learned from the sources itself, that there is one handwriting expert who has been involved over this case, as lots of the MLAs, Trinamool Congress MLAs, has been summoned and has been questioned by the CID, and the CID officers, those the 5-member seat was also formed, and that 5-member seat and ADG, CID and also DG is questioning Abhishek Banerjee regarding the matter. whether it's a forged signature or it's something else, that will be known in a while. But right now, what we have learned, it is around 4 hours, and he was here around 5:50, and right now the time is saying 10:20, and above 4 hours, the questioning is being done, and Abhishek Banerjee is still in the grill of CID.
1: All right, and this seems to be continuing. Is he accompanied by his team of lawyers, or is it only the CID officials and Abhishek Banerjee? Anirban?
2: No, only the CID officials and only the CID officials and Abhishek Banerjee. And what we have seen that Abhishek Banerjee, he was not accompanied by his team or any team
1: and
2: of
1: lawyers.
2: And what
1: really is his defense?
2: But what we have learned itself
1: here
2: from
1: is,
2: the court
1: here
2: today.
1: Here are two MLAs saying that they did not sign. What is Abhishek Banerjee's defense to that?
2: See, Abhishek Banerjee has previously said that you have to prove this, and whether he also said, and his party also said, that you have to prove whether that signature are forged or not. But what we have seen is all the signatures, the 13 signatures, are claimed to be in the block letters of the Trinamool Congress MLA, and three of them already said that they were not in the meeting. So it's been clear after the complaint of the two MLAs, that is Sandipan Shaha, who is MLA from Entali, as well as Ritobroto Banerjee, who has claimed and formed their unit as a TMC in a whole rather than Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. And that's why he is questioned, and right now it's several types of questions, whether the MLAs have been called in the meeting or not, whether they have passed the resolution or not, and whether they have signed or not, and how the forged signature has happened, and how who has done it. Abhishek Banerjee was accompanied by which people, which team, that who has signed those forged signature. This kind of questions and interrogation is going inside what we have learned from the CID sources itself.
1: All right, Anirban, I appreciate your time. So 4 hours and counting, Abhishek Banerjee continues to be grilled by the CID in Kolkata. This is with regards to the forgery or alleged forgery of the signatures that were submitted by his party before the Speaker of the Assembly in Bengal. On that note, we are slipping in a short break. Coming up next would be all the updates with regards to the West Asia war, where Donald Trump has again threatened Tehran. We'll get you details when we return. Stay with us.